0: मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों

0: को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और

0: ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। मैं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर दो दशकों में लगभग एक डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
4: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
3: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
4: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
3: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam has also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. We have more from a correspondent.

स्टेफनी में से प्यार किया है प्यार करेंगे, ये लिखे हुए से एस एच बिहारी और म्यूजिक दिए हुए से लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। एंड हमारे 10 बजे हो लगे अपनी गान होनिया हो ट्रैफिक अपडेट, तब से आपको कंटिन्यू करिए होगा प्रोग्राम टू।

वेल प्रोग्राम तो आपको होनी बहुत दुस्वा गीत और ये लिखी ना पता है गुड आफ्टरनून राजेश्वर इश्क मूवी से इश्क हुआ कैसे हुआ सॉन्ग प्लीज प्ले कर दीजिए इट्स सॉन्ग डेडिकेट टू माय फैमिली एंड ऑल द लवली लिसनर्स एंड यू थैंक यू आई एम सबीना बेगम फ्रॉम सरपुथर गुलाघाट असम पर लिखी ना पता है वेल थैंक यू सो मच सबीना फॉर योर मैसेज आपने लिखी ना पता है दिया निचने एक गाना बजा दी तो लिसनर्स का इतना होनी वो उदित नारायण और विभा शर्मा लगा वास्ते फिल्म से इश्क

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कतर के पिता कहे जाने वाले अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज दिव्य कला मेला शुरू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 2 टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की

मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। भारत ने कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फलस्तीनी डोनर ग्रुप पीडीजी की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय में वाणिज्य दूतावास की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा कि भारत लंबे समय से फलस्तीनी लोगों का भरोसेमंद साझेदार रहा है। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। फीफा विश्व कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी पर समय है रेनबो हेल्पलाइन का। एक बार फिर से आपके साथ मैं बबिता त्रिपाठी, और आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही खास, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबके लिए ज़रूरी है। और जब इतने सारे प्रलोभन हमारे आसपास मौजूद हों, इतनी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की हमारे साथ मौजूद हैं, और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिए भी जब डिजिटल सहारा ही लिया जा रहा है, और हर काम के लिए ये डिजिटली हम एक्टिव रहते हैं, तो भाई ऐसे में मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जा पा रहा है। और कई बार कहें तो मजबूरी हो जाती है कि हम डिजिटली इन्वॉल्व रहते हैं, और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है इस पर भी ध्यान देने का वक्त नहीं है। तो इस पर बात करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए एक्सपर्ट ज़रूरी हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं, डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, जो कि हैं डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। तो उनसे आज हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ आखिर कितनी ज़रूरी है, आखिर डिजिटल एज में मेंटल हेल्थ को किस तरह से और बढ़िया रखें, हेल्दी रखें, और किस तरह से इसका असर पड़ रहा है। और आपकी पर्सनल भी तो क्वेरी हो सकती है बहुत सारी, जो आपको लगता है कि आपके साथ घट रही है, या आपके आसपास अपने परिवार के लोगों के पास डिजिटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है, फिजिकल असर हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी टिप्स जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस नंबर डायल करना है। नंबर क्या है बात करने के लिए, हमसे डायरेक्टली, हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो नंबर घुमाइए और फोन लगाइए। क्या नंबर्स हैं? 2342-1080 या 2342-1084। एक बार फिर से 2342-1080 या 2342-1084। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए, आसानी से इस घंटे आपका सवाल शामिल हो जाए।

0: आएगा कभी भी अगर फोन नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, अपना सवाल लिखेंगे, उससे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। और भेजना किस नंबर पर है, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपके लिए नंबर है 9868107070 9868107070। तो आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल, सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद।
0: तो बहुत सारे सवालों के साथ हम तो रेडी हैं, आप तो मुझे लग रहा है कि सुपर रेडी होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जिससे आपको ऑलरेडी बहुत चीज़ें आपको लग रहा है कि हैम्पर हो रही हैं, मेंटली किस तरह से लोगों पर असर पड़ रहा है इस डिजिटल एज में। तो आप तैयार हैं एकदम?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो चलिए आप सब भी अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं और आप सबके सवालों को शामिल करते हैं, अपने सवालों को शामिल करते हैं और जानते हैं कि आज डिजिटल एज जब ऐसे में जब इतना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए और हर तरह से हर तरफ हम डिजिटली कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़े ही रह रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ की और भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए बस अपने सवालों के साथ जुड़ जाइए फटाफट आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर।

0: तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। मेंटल हेल्थ और डिजिटल एज दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और ऐसे में डिजिटल एज में मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम डिजिटल जो मीडियम्स हैं यानी जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है वो हम जानते हुए भी कई बार अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम ना चाहते हुए भी डिजिटली बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और अवेयर होते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि हम मजबूर हैं। ऐसे टाइम में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनसे राय लेने में बुराई नहीं है, बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए इस शो को आप सुनते रहिए और आपको टिप्स मिलती रहेंगी। डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। उनसे हम ढेर सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं। आप भी अपने सवालों के साथ फटाफट जुड़ जाइए। नंबर है 2342108 एंड 2342108 84, जिस पर आपको कॉल करना है। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपको 9868107070 ये नंबर इस्तेमाल करना है। अपना सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। और अब मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए, तो डॉक्टर श्रुति बताइए प्लीज।
1: मानसिक स्वास्थ्य एक शारीरिक स्वास्थ्य को के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ज़्यादातर जैसे हमारा कोई भी बुखार आया या जो भी खांसी हुई, तो ये सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं, और हम तुरंत ही सलाह लेते हैं और डॉक्टरी सलाह तुरंत ही उसके लिए करते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य जिसको माना जाता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट इनेबल्स पीपल टू कोप विद स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, रियलाइज देयर एबिलिटीज, लर्न एंड वर्क वेल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। ये हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा है। इसका मुख्य तौर पर ये मानना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य को क्या कहा जाए, जो हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगियों के जो तनाव हैं उनको झेल पाते हैं, हमारे में अपनी क्या काबिलियत है उसके वो हम पहचानते हैं, और हम रोज़मर्रा की चीज़ें सीखते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं और एक समाज को कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। तो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जुड़े जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जूझते जा रहे हैं और इंटरनेट की तरफ जूझते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वर्क रिलेटेड कार्य के अलावा कितने घंटे उस प्रक्रिया में जो हमारे काम से संबंधित नहीं है बट इंटरनेट और उससे रिलेटेड चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में हम व्यर्थ लगाते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसका बैलेंस बनाना है और कुछ ना कुछ उसके हमें घंटे का मापतौल रखना है।
0: उस डिजिटल एज में मैम किस तरह से मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है? हाँ। आपने बताया मेंटल हेल्थ क्या है। हाँ। लेकिन ये आज जो हम बात कर रहे हैं कुछ कहीं ना कहीं ये डिजिटल एज है जिससे बहुत असर पड़ रहा है उस पर, तो कितना असर हो रहा है और किस तरह से असर हो रहा है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
1: विश्व में सभी साइकेट्री मनोरोग के उसमें बहुत सारे योगदान और बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, और उन सब रिसर्च के द्वारा, और हम लोग भी योगदान में शामिल रहे हैं, तो योगदान के द्वारा जो निष्कर्ष निकलते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि हम कोई भी चीज़ हम करते हैं एक शौकिया तौर पर, तो उसकी अवधि थोड़ी सी बना के रखें, आधा घंटा, एक घंटा। अगर वही अवधि हमारे रोजमर्रा के कार्य में बाधा डालने लगती है तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कठिनाई उत्पन्न होने
0: क्या
1: लगती
0: क्या प्रॉब्लम
1: है। प्रॉब्लम जैसे कि हमारे रोजमर्रा के काम में अगर हम इन डिवाइसेस पे हुक्ड हैं और हम इन डिवाइसेस की कारण अपने किसी गेमिंग साइट पे हैं, या कोई भी हमने साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, गेमिंग साइट्स हैं, या कोई भी इस टाइप की साइट्स हैं जिन पे हम अपना टाइम, अपने कार्य का टाइम, अपने खाने पीने का टाइम, अपने अपने जीवन शैली के मुख्य कार्यों को छोड़कर, किसी के घर में कोई बीमार है, हमें किसी को लेके जाना है हॉस्पिटल, या हमें कोई ग्रॉसरी से कुछ शॉप से कुछ लाना है, या हमारी कोई रिपेयर वर्क है, हम सब चीज़ों को इग्नोर करके, उनको एक तरह से नज़रअंदाज करके अपनी डिवाइसेस में हुक्ड रहें और इसी में समय ज़्यादा लगाने लगें, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी या जिंदगी की जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिंदगी की गुणवत्ता है, उसको घटाता है और हमारे मन में धीरे धीरे हम समाज से और रियल वर्ल्ड से थोड़े थोड़े हम अलग थलग होने लगते हैं। तो वो चीज़ें हमें बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है जो हमारी यंग जनरेशन है उसके साथ हो रही है, और उसकी तरफ हमारा एक नज़रिया थोड़ा सा बदलना है और उसमें हमें उन्हें रियल वर्ल्ड में लाना है, रोज़मर्रा की जीवन शैली में ढालना है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, खेलना कूदना और सभी तरीके से समाज में जुड़ना, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना। तो ये चीजें और हमारे रोजमर्रा के कार्य में अगर फर्क करेंगी तो हमारी दिक्कत, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है।
0: तो फिजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते होंगे,
1: फिजिकल हेल्थ में भी असर करता है, आईज में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, आई साइट वीक होने लगती है, रिफ्रैक्टरी एरर्स डेवलप होने लगते हैं, स्क्रीन टाइम यूज करने के लिए बहुत उस पर असर पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ही कम एज में अब हमारी कंट्री में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, ओवरवेट की प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरीके की फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, कान में भी ईयर की प्रॉब्लम्स सब चालू हो रही हैं। तो ये सब तो शारीरिक हो गई, इसके अलावा मानसिक तौर पे डिप्रेशन है जिसे अवसाद कहते हैं, लोगों के साथ अगर हमारा बातचीत करने का ही समय खत्म होता जाता है, तो जब हम उनसे रोजमर्रा की सिचुएशंस में वही जो लोग हैं वो अगर वर्क प्लेस पे काम करते हैं या कार्यशीलता पे, तो उनका आपस में समाज में क्योंकि उठना बैठना कम रहा है, तो वो उसमें भी माहौल में भी काम करने में उतने सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ पाए जाते हैं।
0: मैम समाज में तो अभी मुझे लगता है हम थोड़ा आगे चले गए, फैमिली के लोगों के लिए ही टाइम
1: फैमिली के लोगों के लिए टाइम नहीं है। तो फैमिली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फैमिली टाइम आप एक बनाएं, और डिजिटल वर्ल्ड को एक मेरी एक मुख्य राय जो है वो ये है कि आप कम से कम खाना खाने का या डिनर टाइम जैसे है उसमें सब लोग अपना अपना फोन और अपने अपने डिवाइसेस बंद करके उसको अपने आप हंसना बोलना बातचीत करना और उसको डिनर को एंजॉय करना स्टार्ट करें।
0: तो चलिए आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, आपको कहाँ लगता है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो टीवी मोबाइल या फिर आप खुद ही ऐसे हो सकते हैं कि टीवी मोबाइल या कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ चाहिए जिससे आप लगातार जुड़े रहते हैं, कहीं खाली टाइम शायद अपने लिए निकाल ही नहीं पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप खाली अपने साथ कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है या आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आपको 24 घंटे लैपटॉप के सामने फोन पर बैठना पड़ता है, बट ऐसे में भी आप अपना टाइम निकाल कर कुछ अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, तो किस तरह से टाइम निकालें और किस तरह से मोटिवेट करें अपने आप को, ये जानने के लिए आपको फोन घुमाना है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करनी होगी। और फोन घुमाने के लिए आपको क्या करना है, 2342108 डायल करना है और 2342108 ये दो नंबर हैं जिनको आप डायल कर सकते हैं, या आप सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या आपको कि मेंटल हेल्थ पर भी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी कुछ असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन या बहुत ज़्यादा टेलीविज़न या बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर बैठने से, काम करने से या कई बार ऐसे ही रील्स देखने से। तो नंबर अगर नहीं डायल करना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल लिख भेजिए। और तब तक एक म्यूज़िकल ब्रेक और लौट कर आते हैं फटाफट आपके सवालों के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ बबिता त्रिपाठी। मेरे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। फिलहाल मेंटल हेल्थ डिजिटल एज में कैसे मेंटेन करें, सोशल मीडिया का जमाना है, अब साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असर पड़ना जायज है, और ऐसे में वर्क बैलेंस करना, वर्क लाइफ बैलेंस करना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो दिनचर्या में हैं शामिल हैं और उनको हम अवॉइड करते जा रहे हैं, जो ज़रूरी है अवॉइड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे रील्स में खोए हुए हैं, 24 घंटे मोबाइल पर बात कर रहे हैं, 24 घंटे या हो सकता है कई बार मजबूरी में आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी ऐसा हो जाता है, तो बैलेंस करना तो ज़रूरी है ना। निधि की भी प्रॉब्लम यही है, प्रयागराज से हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें और योग या प्राणायाम के लिए कैसे समय निकालें, क्योंकि सभी काम के लिए तो समय निकल जाता है लेकिन खुद को फिट कर रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकल पाता है। तो ये तो हमारी एक्सपर्ट ही बताएंगी, सबकी प्रॉब्लम यही है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है निधि जी आपने। इसके लिए यही है, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक अहम बात यह कि जैसे आप अपने काम में सुचारू रूप से और पूरी तरह से ध्यान लगा के करते हैं, वैसे ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप वो कार्य उस तक डिलीवरी नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो कोई ना कोई बीमारियां आपको घेर लेंगी, चाहे वो शारीरिक हैं चाहे वो मानसिक हैं। और इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जो प्रायोरिटी सेटिंग है, प्रायोरिटी सेटिंग मतलब कि हम एक अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने को उस लक्ष्य से हटाएं ना। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, अपना लक्ष्य बनाएं, और जब हम अपनी दिनचर्या बनाएं तो हम अपनी दिनचर्या में कुछ समय अपने लिए रखें जो सिर्फ हमारा निजी स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए हो। और उसके लिए अगर हम आधा घंटा या एक घंटा शाम का या रात का या जब के अभी या सुबह का, जो भी आपको टाइम सूट करता है, इवन लंच ब्रेक का टाइम वो भी आपको सूट करता है, तो आप चाहें उस एक घंटे को रख लें, पर आप उस एक घंटे के टाइम को प्रायोरिटी पे रखें और उसको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। तो ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है। और बाकी आप रिमाइंडर कॉल्स, अलार्म कॉल्स अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं या आप अपनी डिवाइस पर सेट कर सकते हैं, वो आपको संकेत देंगे, या ये इस कार्य के लिए आप अपने घर परिवार को की मदद भी ले सकते हैं जो कि आपको इनकरेज करे और प्रोत्साहित करे, और आप सब लोग एक फैमिली टाइम की तरह योगा के मैट्स लगा के घर पे भी कर सकते हैं, रोजाना
0: कर सकते हैं
1: डिनर के पहले।
0: बट वही होता क्यों नहीं है?
1: वो होता वो नहीं है क्योंकि हम एक उसको एक, अभी जैसे इंटरनेशनल योगा डे था तो हमारे देश में क्या विश्व में सभी जगह पर सभी लोगों ने योगा किया और वो योगा मैट सभी सबके पास है ही। तो आजकल तो स्कूल कॉलेजेस और वर्क प्लेस में भी सभी जगह पे ये प्रावधान बनाए जा रहे हैं, तो हम वो प्रावधान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल करें
0: और अपने बुजुर्गों को भी
1: अपने बुजुर्गों

0: अपने घर परिवार को सबको लेके करें। आजकल बहुत ही तरीके तरीके के आ गए हैं जो कि रुचिदायक होते हैं, म्यूजिक लगा के भी करते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से लेकर खान पान और बिजली के बिल भरने तक जब हम इस यंत्र के इतने अधीन हो चुके हैं तो दूरी बनाना आसान कैसे हो सकता है? पैंथर तोमर कह रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, उनके सवाल का जवाब दीजिए प्लीज।
0: जैसे ये डिवाइसेस का जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो है, पर आप ये देखिए कि आपको डिजिटल डिटॉक्स जिसे हम कहते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक डिजिटल हेल्थ लिटरेसी है, जिसे डिजिटल लिटरेसी मतलब हमें इन उपचारणों की जरूरत है, हमें इनके बिना हमारा रोजमर्रा की जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल है। बट ये नहीं है कि अगर हम एक घंटे तक या दो घंटे तक अगर हम अपने को इस चीज से फ्री रखेंगे या सोने के पहले खासकर हम दो घंटे इस डिवाइस को तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई इम्पोर्टेंट कॉल आए या कोई चीज आए, तब हम उस तरीके से अपना बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। तो हमें डिवाइस से अपने को हुक नहीं रखना है, डिवाइस को आप कुछ देर के लिए एक अलग कमरे में रख सकते हैं या कुछ देर के लिए अपने ड्रॉर में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, जिससे आप जब कार्य करें या जो कोई और चीज करें तब आप उसको पीरियोडिक बेसिस पर उसको एक्सेस करें। तो वो लिमिट सेटिंग है, जो लिमिट सेटिंग की बात मैं कर रही हूं उसमें आपको खुद अपने को उस डिवाइस से दूर रखने की आदत करनी है। और यही अगर एक गंभीर किस्म में जाता है तो ये कंपल्सिव इंपल्सिव स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं कि हमारी इतनी तीव्रता इन चीज को यूज करने की इतनी आदत बन जाती है कि हम उससे अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ नहीं पाते, मतलब इस तरीके की हालत कि हम सेल फोन से ही बिल्कुल अडिक्ट हो गए या हम ये सोशल नेटवर्किंग साइट से हो गई, बच्चे उन्हीं से अडिक्ट हो गए, या हम गेमिंग कर रहे हैं तो उसी पे इंटरनेट पे ही खेलते चले जा रहे हैं, इंटरनेट गेमिंग हो गई चाहे सोशल नेटवर्किंग, तो ये सारे हमारे एक तरीके के बिहेवियर एडिक्शंस एक नई एंटिटी है जिसमें कि ये सारी एंटिटीज डिस्क्राइब्ड है और मानी जाती है। जैसे कि हमें नशे की लत लगती है उसी प्रकार से हमें इन चीजों की भी लत लगनी चालू हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में ये सब चीजें हमारे जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन के अंदर उनको जो है, जैसे कि हम जो डोपामीन और सेरोटोनिन नाम के पदार्थ हैं उनके उनके ब्रेन में सर्किट्स हैं, तो वो शुरू शुरू में हमें उससे प्लेजर मिलता है, खुशी महसूस होती है जब हम इनको शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम पाते हैं कि हम उस पर बिल्कुल निर्भर हो गए हैं, हम उसके बिना बिल्कुल, शाम का हमें खाली समय है लेकिन हम खाली समय में उसी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वही चीज हमारे मूड को सही रखना शुरू कर देती है, हम लोगों से अलग थलग होने लगते हैं, हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, हम रोजमर्रा की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम समाज से अलग हटते चलते हैं, हम घर में बैठे हैं लेकिन घर में चार लोग चारों डिवाइस पे हुक्ड है तो वो आपस में बातचीत ही नहीं कर पा रहे, उनके आदान प्रदान ही नहीं हो पा रहा, वो कोई राय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे
1: जी।
0: तो ये सब हमें इस चीज से दूर रखना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम डिवाइस को रखने का अपना संतुलन बनाएंगे और अपना एक डिसिप्लिन बनाएंगे।
1: डिसिप्लिन ही बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है।
0: हाँ।
1: और ऐसे में कॉन्शियसली आप क्या क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं?
0: हाँ,
1: तो वो जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने पैंथर तोमर ने आगे भी लिखा है कि सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर लाइक देखने की होड़ लग जाती है, कम लाइक मिलने पर उदासी छा जाती है, क्या हम मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं? छुटकारा कैसे पाया जाए?
0: छुटकारा ऐसे पाया जाए कि ये चीजें जो लाइक्स हैं और ये डिसलाइक्स हैं ये मॉर्निंग में खोल रहे हैं तो ये आप ही तो खोल रहे हैं, आपको अपना सेल्फ रेगुलेशन बनाना है कि ये मैं जब फ्री होंगे तब खोलेंगे, है ना, या आपने संडे के टाइम में दिन में रखा या छुट्टी वाले दिन रखा
1: कि मैं
0: एक फिक्स टाइम एक आप बनाए फिक्स टाइम बनाए और उसी टाइम पे खोले, तो ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज से अलग रहेंगे और आप सुबह के टाइम में आप अपनी कोई भी आउटडोर आपकी कोई भी एनर्जेटिक एक्टिविटी है, चाहे आपकी वॉकिंग हो गई, चाहे आपकी योगा हो गई, चाहे कोई आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, चाहे एक सिंपल सा काम जैसे कि दूध लाना, मदर डेयरी तक जाकर दूध लेकर आना, एक सिंपल सा काम, या ग्रोसरी शॉपिंग का कोई भी उस तरीके का कोई रूटीन डेवलप करें इसके अलावा।
1: क्या प्रॉब्लम ये भी है कि हम सारी चीज़ें घर पे ही मंगा ले रहे हैं, दूध वाला घर पे दूध दे जा रहा है, और कोई शॉपिंग करनी है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं घर बैठे बैठे, तो वो इसकी वजह से भी हम कई बार मोबाइल पे लगे रहते हैं। कुछ कपड़ा खरीदना है, सामान कुछ खरीदना है, हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं, उसके लिए घंटों हम ढूंढते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। तो इसके लिए भी हम मेरे ख्याल से ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आप फिजिकली भी
0: फिजिकली मेहनत करेंगे, एनर्जेटिक रहते हैं। जब हम एक घर से बाहर निकलते हैं, कहीं कुछ लेने जाते हैं या छोटा मोटा सामान लाते हैं, तो हम चार लोगों से बातचीत करते हैं, चार चीजों से मोल भाव करते हैं, चार लोगों से हमारा संपर्क बनता है।
1: हाँ।
0: चाहे वो एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मदर डेयरी की दुकान ही क्यों ना हो। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जरूरी है कि वो संपर्क समाज से जुड़े।
1: और बच्चों में ये भावना तभी ला सकते हैं जब हम खुद इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे होते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं,
0: और बच्चों के साथ में ही जाएं,
1: बच्चों को साथ में लेकर जाएं। और क्या क्या पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चों को डिजिटल मीडिया से पास में होते हुए भी दूर रखने के लिए? हाँ। क्योंकि जरूरी तो है ही, जैसे बताया कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अब बच्चे को आप नहीं हटा सकते, तो ऐसे में ये सारी चीजें जब उनको डिजिटल वर्ल्ड से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ पर असर ना पड़े, वो एडिक्ट ना हो, इसके लिए पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बस आपकी पसंद का एक और गाना है जो बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, तो उसको चला देते हैं, उसको सुन लेते हैं और लौट कर आते हैं। इस टॉपिक पर फिर से बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव हमारी गेस्ट आज हमारे साथ है, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। फिलहाल आप सबके फोन का भी इंतजार हो रहा है, 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070।

0: सोशल मीडिया जरूरी है, हम सब जानते हैं, और डिजिटल एज में हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे मेंटल हेल्थ को भी बरकरार रख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा बच कर चलें, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें। यही कह रही हैं डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव। और आप अपनी तरफ से आपको क्या फील होता है कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, क्या कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये डिजिटल एज में मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने में, आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और उसके लिए मैंने बताया 2342-1080 पर कॉल कर सकते हैं या 2342-1084 पर कॉल कर सकते हैं या सिंपली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868-1070-70 पर, जैसा सूर्या ने किया है बाड़मेर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जाने अनजाने में एक कंपैरिजन लूप बन जाता है, इस वजह से युवाओं में तनाव और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। और इनका सवाल है कि सोशल मीडिया के जाल और कंपैरिजन लूप से खुद को कैसे बचाएं, मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। और यही बात कह रहे हैं पैंथर तोमर भी कि दूसरों की रील्स और पोस्ट में दिख रही परफेक्ट लाइफ से अपनी असल जिंदगी की तुलना करना क्या युवाओं में डिप्रेशन और हीन भावना की सबसे बड़ी वजह नहीं बनता जा रहा।
1: हाँ, ये अनुसंधान में भी पाया जा रहा है कि जो जो इन डिवाइसेस पर जो इंटरनेट एडिक्शन की जो एंटिटी जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था या बिहेवियर एडिक्शंस, तो जो बिहेवियर एडिक्शंस के जो हम बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं जो कि उपलब्ध हैं, प्रश्नावली हैं जो आप ओपन तरीके से भी अवेलेबल होती हैं, तो उसमें कई इसी से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। तो जो लोग इसमें ज़्यादा इंडल्ज करते हैं या इनमें ज़्यादा समय लगाते हैं, वो उसमें अवसाद, एंजाइटी, मानसिक तनाव बढ़ने के और ये सब लक्षण जो हैं सब ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे कई सारे अनुसंधान हैं जो कि पब्लिश्ड भी हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स पर, तो उनमें हमने ये पाया है कि ये मेंटल हेल्थ में इंटरनेट एडिक्शन के साथ, बिहेवियर एडिक्शंस के साथ डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का जो संख्याएं हैं वो 25% तक as 25% स्केल्स में पाई गई हैं। और उसमें हम जब फर्दर उसको बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, तो उसमें हम फर्दर जब उनको बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं तब हम और सवालों के जरिए और मानसिक स्वास्थ्य के सवाल प्रश्न पूछ के डिटेल में जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ परसेंट में ये हम इस एंटिटी के काफ़ी क्लोज आते हैं, और कुछ परसेंटेज में हमें दवाई या रेगुलर काउंसलिंग या थेरेपीज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज करनी पड़ती हैं।
0: ओके, करने तो हमें दूसरों की रील्स और पोस्ट देखकर ज्यादा
1: प्रभाव नहीं, यही एक है चीज कि आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, आपको अपने को दूसरे की चीज से प्रभावित नहीं होना है। ये एक जानकारी है जो आपको मिल रही है कि उन्होंने ये कार्य किया या उन्होंने ऐसे घूमने गए या उन्होंने ये पहना, लेकिन इससे आपको प्रवाहित अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होना है। जैसे आपने कोई नाटक देखा या आपने कोई मूवी देखी तो उससे भी आपको प्रभावित उस तरीके से नहीं होना है। तो यही एक है कि टेक्नोलॉजी है पर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग आप नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए।
0: ओके, तो यही तो हमें जानना है कि किस तरह से हम सदुपयोग करें, क्या ऐसा कर सकते हैं जिस

0: की वजह से हम लगातार इन सब चीजों के जाल में ना फंसे।
1: अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना परिवार के साथ, समाज के साथ मिलना जुलना और बातचीत करना, खेलना कूदना, जैसे हम एक बच्चे को, क्यों ना हम बच्चे हुए, छोटी उम्र के बच्चे हुए, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे हुए, 6 साल से कम के या 6 से 12 साल के, तो उन्हें हमें रोजमर्रा के खेल कूद में बाहर फील्ड्स में लेके जाना, पार्क में लेके जाना बहुत ही अनिवार्य है। उससे बच्चे खुद हारना जीतना, कैसे आपस में बातचीत करनी है, ये सब चीजें सुचारू रूप से सीखते हैं। और वो एक आपस में मिलते जुलते, हंसते बोलते बातचीत करते हैं, जिससे उनका आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो आगे वही बच्चे जब बड़े होके कोई एग्जाम देते हैं तो वही उनका सपोर्ट ग्रुप बनता है, हंसना बोलना, बातचीत करना, और ये ही यादें सबके साथ जुड़ी हुई हैं।
0: यानी आप डिप्रेशन में ना आए या आप हीन भावना से ग्रस्त ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लोगों से मिलना है, ज्यादातर ऐसी एक्टिविटीज करनी है,
1: एक्टिविटीज करें
0: जिससे आप ज्यादातर लोगों में रहें।
1: हाँ,
0: तो उससे क्या होगा कि आप लोगों से भी मिलेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और मेंटली भी आप खुश रहेंगे। तो प्रभावित होना है, बट थोड़ी देर के लिए नहीं, प्रभावित होना भी जरूरी होता है। क्यों, आपको क्या लगता है कि अगर हम प्रभावित नहीं होंगे तो हम नई चीजें कैसे सीखेंगे?
1: नहीं, अगर प्रोत्साहन की बात मानी जाए तो जैसे कि आपने देखा कि भाई फला ने ये ऐप डेवलप करी, फला देश ने ये ऐप डेवलप करी, फला देश के बच्चों ने ये ऐप डेवलप करी, तो वो ऐप डेवलप बच्चे अगर हमारे देश के करेंगे या टेक्नोलॉजी से करेंगे तो वो एक वर्क रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, उसे हम इसमें नहीं जोड़ते हैं।
0: तो अच्छी चीजों का मोटिवेशन ले सकते हैं और जो चीजें आपके लिए,
1: ये नॉन वर्क रिलेटेड यूसेज की बात कर रही हूं मैं, जो कि ये एंटिटी जो है खासकर नॉन वर्क रिलेटेड यूसेज है, जो वर्क रिलेटेड या जो एकेडमिक या प्रोफेशनल वर्क से या रोजमर्रा के काम से संबंधित है वो सब वर्क रिलेटेड यूसेज है, उसका वर्क रिलेटेड यूसेज का इस में नहीं जोड़ा जाता है।
0: ओके, एक फोन आ रहा है, लेते हैं। हेलो हेलो, मुझे लगता है इन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी है, लेकिन इनका सवाल भी कुछ इसी तरह से था कि क्या ऐसा करें जिससे वो मोबाइल की एडिक्शन से बाहर निकल सकें, क्योंकि उनको भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है। और एक सवाल और आ रहा है कि मेरा एक दोस्त है, वो मोबाइल पर घंटों गेम खेलता है, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सामने कोई होता है तो भी बड़बड़ाने लगता है, क्या वो मानसिक बीमारी का शिकार हो चुका है?
1: हाँ, मैं यही कहूंगी कि हम, मैं एक टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर भी है जो हमारे स्वास्थ्य की तरफ से भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जो कि उस पे आप कॉल करके साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में कॉलर्स अवेलेबल हैं, 1-800-891-4416। तो ये एक टेलीमानस की हेल्पलाइन है जो केंद्र सरकार की तरफ से है, और ये फ्री है, ये मुफ्त है, आप टोल फ्री नंबर डायल करके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सलाह ले सकते हैं। और ये जो आपने लक्षण बताए, ये डेफिनेटली आप किसी भी सरकारी अस्पताल में, जैसे हमारा गुरु तेग बहादुर अस्पताल फ्री सुविधाएं देता है, प्रदान करता है, तो ये जरूरी है कि इसको संपर्क कराएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इन डिवाइसेस का अगर हमें नियंत्रण खो रहे हैं, कंट्रोल खो रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन हमारा जा रहा है, तो हमें कंसल्ट करना जरूरी है।
0: मोहम्मद इम्तियाज जवाहर के हमसे लिख रहे हैं कीर्तिनगर में, और इन्होंने लिखा है कि कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो इन्होंने धन्यवाद दिया है, उसके बाद जो सवाल है वो लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन पर वैसे तो मेरा ध्यान नहीं रहता है कि किसने लाइक किया या नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल है कि जैसे मैं 7-8 घंटे रेडियो सुनता हूँ और ईयरबड्स लगाता हूँ, तो मेरे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा?
1: रेडियो लगाने पर मेंटल हेल्थ में अगर
0: पॉजिटिव असर
1: तो रहेगा, लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगी कि कानों के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए ये चीज जरूरी अच्छी नहीं है कि आप 7 से 8 घंटे का आप उसको यूसेज को आप कर्टेल करें। सबसे बेहतर चीज ये है और उस यूसेज को आप इजीली कर्टेल कर सकते हैं क्योंकि आपको डिवाइस से मुक्त करना है अपने को, और इसमें कोई विशेष कार्य नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अपने को डिवाइस से हटाना है, तो वो आपको बंद करना है और

0: लीगल सारी एडवाइजरीज देती हैं और जो आपको नोटिफिकेशंस बंद करना और ये सब, तो ये सब डिवाइसेस में इनबिल्ट हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और नॉर्म्स. तो वो जरूरी है कि सभी लोग उसको पढ़ें और देश के और विदेश के कानूनों को समझें, क्योंकि ये आपको एकदम से एक ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाता है. तो आप कोई भी चीज ऐसी ना करें जो कि किसी कानून का उल्लंघन करता है. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कानून का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही ये आपको सबको सतर्क रहना जरूरी है.
1: ओके, सौरभ गुप्ता लिख रहे हैं फरीदाबाद से. इन्होंने कहा कि बहुत सारा टाइम ये पहले बिताते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, अब इन्होंने कहा कि रियलाइज किया इन्होंने कि उनका जो वर्क है वो इस पर सफर कर रहा है, तो उन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया ये सब. लेकिन अब ये एक चीज नहीं कर पा रहे हैं कि ईमेल और व्हाट्सएप से एक तरह से इनको एडिक्शन हुआ पड़ा है. लंबा मैसेज है तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ उसको. इन्होंने लिखा कि यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स आते हैं उस पर वो काफ़ी ध्यान देते हैं, एडिक्ट हो गए हैं. उन्होंने कहा कि जॉगिंग के लिए भी जाता हूँ मॉर्निंग में, बट एंड अप होता है स्किपिंग एवरी डे एज आई एंड वेस्टिंग टाइम ओवर यूट्यूब एवरी मॉर्निंग.
0: तो वो सिंपल सी बात है कि आप डिवाइस को वर्क रिलेटेड पर्पस के लिए ऑन करें, और जब आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो डिवाइस को बंद करके टेबल पर रखें, टेबल के ड्रॉअर में डाल दें, दूसरे रूम में रख दें. और अगर आप ये करने में फिर भी असमर्थ हैं तो आप अलार्म सेट कर सकते हैं या डिवाइस को ऑटोमेटिकली शट डाउन करने के इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, साइलेंट मोड पे जा सकते हैं. तो ये सब आप कर सकते हैं.
1: तो थोड़ी सी टिप्स और दे दीजिए क्योंकि चलने का समय आ गया है, तो टाइम इतना नहीं बचा है. काफ़ी कुछ, वैसे बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते हैं वो आप बताइए.
0: ऐसा क्या है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. तो हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य के ऊपर, कि हम कहीं ना कहीं एक रेखा तो नहीं पाल कर रहे. एक लाइन बनाइए कि हमें इतनी देर करना है, इस पर्पस से करना है, और इसका क्या उपयोग है और इसका क्या दुरुपयोग है. तो चाहे आप एक कॉपी में ही लिखें, चाहे आप एक पेन पे लिखें, चाहे आप फोन की नोटबुक का पैड यूज करें, चाहे बच्चे आईपैड यूज करें, और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड करें, अपनी जीवन चर्या बनाएं. और डिसिप्लिन में आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और समाज से जुड़ने वाली जो भी आपकी हॉबीज हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें और इनकल्केट करें. और अपने कार्य और अपने सोशल ऑब्लिगेशंस और अपने वर्क रिलेटेड सभी चीज की तरफ से आप सुचारू रूप से वो हों, और इसको एक रिलैक्सेशन का, खाली इसी को एक रिलैक्सेशन का जरिया ना बनाए.
1: तो ये रिलैक्सेशन का जो जरिया है बनता जा रहा है हम सबका, तो हम क्यों ना अपने फ्रेंड्स को एक बार कॉल लगाएं और बोलें कि चलिए कभी कभार या हफ्ते में दो बार ही सही कोई मीटअप करते हैं और एक घंटा बिताते हैं, और उससे हम बहुत सारे मसाले तैयार करते हैं जो हमारी जिंदगी में वैसे ही एंटरटेनमेंट लेकर आएगा. क्योंकि हो सकता है आपका एक बढ़िया सा ग्रुप बन जाए जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए आप अक्सर जाया करें और सोशल मीडिया से काफी दूर हो सके, मतलब रिलैक्स हो सके इससे. क्योंकि अगर आप लगातार सोशल मीडिया से पर जुड़े रहेंगे या वहीं से एंटरटेन होते रहेंगे तो आप अकेले भी होते जा रहे हैं, तो यही समस्या आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है. और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं लेकिन समय अभी अलाउ नहीं कर रहा है. और जो जो छोटी छोटी टिप्स हैं मैम ने दिए हैं उन सबको आप अगर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए काफी होगा. इस शो में हमने बहुत काम की बात की है आज, हमने बात की मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ. तो फिलहाल थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, जो कि आप आई और इतना कीमती समय निकाला, बहुत सारी आपने जानकारियां हमें दी और उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत काम आएंगी. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू.
1: तो ये थी डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल. आप सब अपना ध्यान रखिए, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए. और हाँ, ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है इस सोशल मीडिया के दौर में. टेक केयर, बाय बाय.

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कतर के पिता कहे जाने वाले अमीर शेख हमद बिन खालिद अल थानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। जम्मू नगर निगम ने शहरी वन विभाग के सहयोग से हरित जम्मू स्वच्छ जम्मू पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सुनजवान चौड़ी सड़क के किनारे 2000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में आज वार्षिक अनिवारा स्थानम उत्सव की तैयारियों के तहत पारंपरिक कोइल अलवर तिरुमंजम का अनुष्ठान संपन्न किया गया। ये अनुष्ठान वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज दिव्य कला मेला शुरू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग।

आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा होगी। भारत ने कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फिलीपींस डोनर ग्रुप PDG की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय में वाणिज्य दूतावास के सचिव श्री पिया रंगराजन ने कहा कि भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों को भरोसेमंद साझेदारी में रहा है। इंग्लैंड के शेशेल्स नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। फीफा विश्व कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। और अंत में मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूरा अनुमान लगाया है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्य बारिश का अनुमान है। तो ये थे FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। वक्त की बात की जाए तो वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि वक्त हुआ है 2:05 और पूरे 45 सेकंड। ये वक्त है आशियाना प्रोग्राम का और आज रहता है वुमेन स्पेशल डे। बातें होंगी उन महिलाओं की जिन्होंने लीक से हटकर बहुत कुछ करने की कोशिश की, सफल रही, उनके प्रयास सफल रहे, लेकिन किस तरह वो आगे बढ़ी ये जानेंगे आज आशियाना प्रोग्राम में।

आशियाना प्रोग्राम वुमेन स्पेशल सेगमेंट और आज हम बात करते हैं महिलाओं की, उनके जज्बों की, उनके हौसलों की, उनके प्रयासों की। और आज हम बात करेंगे पटना के दानापुर के डिब्रा गांव की उन महिलाओं की जिन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की, प्रयास किए। जी हाँ, और इस प्रयास और कोशिश में उन्होंने एक महिला बैंड की स्थापना की, सरगम महिला बैंड। जब हम म्यूजिक की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात करते हैं, तो एक्सपर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो वो इसे एक थेरेपी के तौर पर देखते हैं। वहीं कई लोग शौक के तौर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को देखा जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वाद्य यंत्रों का अपना विशेष स्थान रहा है। शादी ब्याह में, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में, जी हाँ, म्यूजिकल बैंड एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में हम बैंड वादक के तौर पर पुरुषों को ही देखते हैं। जी हाँ, हमें कहीं भी महिलाएं नजर नहीं आती हैं कि वो किसी बैंड का संचालन कर रही हों या वाद्य यंत्रों को बजाते हुए एक बैंड का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन डिब्रा गांव की महिलाओं ने बैंड वादक के तौर पर अपने आप को स्थापित किया, प्रसिद्धि ख्याति अर्जित की। डिब्रा गांव की महिलाओं के लिए अगर म्यूजिकल बैंड ग्रुप की स्थापना

देखा जाए तो ये आसान नहीं था और ये उनका शौक नहीं था, बल्कि ये एक मजबूरी थी। ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, जीवन यापन के लिए खेत में काम करती थी या फिर मजदूरी करती थी। आमदनी बहुत कम थी और परिवार को चलाना, परिवार को पालना बहुत मुश्किल। और पैसे कमाने के लिए, जी हाँ, इन महिलाओं ने सरगम महिला बैंड की स्थापना की और फिर एक बार जब चलना शुरू किया इस फील्ड में तो वो आगे बढ़ती ही चली गई। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं होता है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, लगन होती है, हौसला होता है और ज़रूरत होती है जुनून की।

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: बैक आशियाना प्रोग्राम वुमेन स्पेशल। और आज हमारे साथ है कहानी पटना के दानापुर के डिबरा गांव की उन महिलाओं की जिन्होंने सरगम महिला बैंड की स्थापना की। जी हां, साल 2012 की बात की जाए तो डिबरा गांव की 16 महिलाओं ने एक एनजीओ कार्यकर्ता सुधा दीदी की मदद से सरगम महिला बैंड की स्थापना की और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा। ये यात्रा आसान नहीं थी, लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने दिए और इन महिलाओं के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। इसका असर ये रहा कि 16 महिलाओं में से 6 महिलाओं ने सरगम महिला बैंड को छोड़ दिया, लेकिन बैंड की 10 महिलाएं डटी रही और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। पहले पहल इन महिलाओं को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों को पकड़ना भी नहीं आता था, बजाना तो बहुत दूर की बात थी। इन महिलाओं ने 1.5 साल तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा। ये महिलाएं घर पर पूरा काम करती थी, फिर खेत पर काम करने जाती थी और फिर सभी महिलाएं हर दिन 2 से 2.5 घंटे, जी हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें बजाने की प्रैक्टिस करती थी। ये डगर बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन हिम्मत और लगन इन महिलाओं के साथ थी।
4: मंगल

हरियाणा के दानापुर के डिबरा गांव की महिलाएं जिन्होंने खुद से निकलकर जीने की ठान ली। जी हां, बिहार का पहला महिला बैंड सरगम महिला बैंड। जब इन महिलाओं ने पहली बार एक शादी में बैंड बजाया तो ये कांप रही थी और वो कह उन्होंने बताया कि बच्चे उन पर हंस रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे, पुरुष और महिलाएं उन पर हंस रही थी, उन्हें ताने दे रही थी, लेकिन सरगम महिला बैंड की महिलाओं ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसे देने की कोशिश की और वो कहती हैं कि यहीं से उन्हें हिम्मत आए कि वो आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिहार का पहला महिला बैंड सरगम महिला बैंड सफलता के आयाम गढ़ रहा है। आज शादी ब्याह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा गवर्नमेंट के सरकारी अलग अलग कार्यक्रमों में भी ये बैंड शिरकत करता है। साथ ही साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर्स के कई सारे कार्यक्रमों में इस महिला बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया दिल्ली में और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन की बहुत ही फेमस शो केबीसी में भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। वो कहती हैं कि उन्होंने पटना तक नहीं देखा था लेकिन इस बैंड की बदौलत, इस बैंड को आगे बढ़ाते हुए वो हवाई जहाज तक की यात्रा की। वो मुंबई दिल्ली हवाई जहाज में गई और वो कहती हैं कि वो लोग जो पहले उन्हें चिढ़ाते थे, उनको ताने देते थे, ताने मारते थे, उन्होंने यही हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप सभी ने जो हवाई जहाज है उसकी यात्रा कर ली, हमने तो सिर्फ उसे आसमान में उड़ते हुए देखा है। जी हाँ, सरगम महिला बैंड की महिलाओं ने वो कर दिखाया जो सोच के परे था। आकाशवाणी परिवार सरगम महिला बैंड की महिलाओं को नमन करता है। बोल, बोल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है,
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया

0: प्रेमी हमें मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी
0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोता आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं

0: जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
0: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
0: जी, पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
0: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: हाँ, जी मैम।
0: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
0: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों

0: की बात करें तो
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई

0: साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: Well, my dear friends, idea se gayamat film ra Kumar Sanu aro alkayaknik awaste. Music desi Nadim aro Shravan, lyrics Samir. Aro idu Keith Karni request kuri na likhise mikhan laga listener Shripal Koyal from Bahadurkar, Haryana. To hunikita enjoy kribi, Shripal ji, thank you so much for writing in. Hunikita enjoy kribi gayamat film ra.
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
6: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness

0: वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
2: We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
1: Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights,

0: চৰকাৰ হেলথ চেণ্টাৰ্ছে বিপি লগা ফ্ৰী চেকআপ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু কাউ ভাল থাকিব লগা মদত দি আছে। বিপি লগা কোনোবা সৱাল থাকিলে টোল ফ্রি নম্বৰ 1800 116666 কল কৰিবি। বিপি হাৰিব দেশ জিতিব।
1: পুৰু জানকাৰী NTEP পৰা দি আছে।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे?
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: হ্যালো, গুড ইভিনিং মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, মাই লাভলি অ্যান্ড অসম লিসনার্স। আপনি কান সবকে প্রোগ্রামে স্বাগত করে আছে আকাশবাণী কোহিমা FM ট্রগবান 103 মেগাহার্টজতে। আপনি কান লাগা হোস্ট আর দোস্ত আর যে তামজন লগতে। ওয়েল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি কানে ইতিয়া শুনি হব একটা ডুয়েট অ্যান্ড কোরাসেস লাগা প্লে লিস্ট। আর আমি কানে সেলিব্রেট করে হব দ্য ম্যাজিক অফ সোলফুল and vibrant choruses numbers that define the era of 2000 to 2005. The first song is Udit Narayan and Lata Mangeshkar Awaste, and the DSA Mohabbatin Filmbra. Music is Jatin and Lalit, lyrics Anant Pakshi. My dear friends, we begin with a melody that has touched millions of hearts since the turn of the millennium. Honikina in Dragory, one of the most loved songs of the film, it beautifully captures the innocence of first love.